0: action.
1: अरे वो लोग को शूट कर रहे हैं,
2: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना, या कम ऑन, बाल की शूटिंग हमारे बगैर?
4: तेरी मां दिया फेरे कुड़ी, मुड़े जब तू कहीं सहन कुड़ी।

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथ ही शुक्रिया करना चाहेंगे आप लोगों को हमारे साथ जुड़े हैं इतने देर से, और भी हम आप तक सॉन्ग्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे. द सॉन्ग देयर वाज जस्ट प्ले टुडे आई मे हैव हेड बिफोर या पहले सुना बट मुझे याद नहीं, बट होप ये गीत भी आपको अच्छा लगा होगा. और चलो हम नेक्स्ट सॉन्ग पर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी विंटर चल रहा है, आई नो इट्स अ बिट कोल्ड एंड होप यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर. आई एम नॉट श्योर आप विंटर से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो. आई थिंक हीट पंप इज द कोल्ड फॉर द डे. मे बी अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे होंगे जो फायर एट योर होम, बट आई थिंक मेजोरिटी अब हो चुका है हीट पम्प्स. और कॉस्ट ऑफ जो पावर देर इज नॉट गोइंग टू गो इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज़ कॉस्टली. देखते हैं कि आगे क्या होता है. दे टॉक अबाउट सोलर, बट आई नॉट रियली श्योर हम किस लेवल पे है और वेदर न्यूजीलैंड इज रेडी टू एम्प्राइज या तो फिर सोलर इज रियली गोइंग टू वेक फॉर न्यूजीलैंड. साइल में वही सुन रहा था अबाउट सोलर कि इवन इफ यू हैव दोज पैनल्स देन यू हैव टू रेगुलरली क्लीन इट.
2: You have to clean. यार डस्ट रहेगा तो फिर पावर नहीं जनरेट करेगा.
1: आई नो व्हेन आई वाज इन फिजी, अगर किसी के घर पे ना

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govai's Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी का कुछ तकलीफ दे रहा है, देन डेनी ऑन द गो ईस्ट गेट आप जा सकते हो. और ड्राइविंग लेसन अगर आपको चाहिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको आपका कोई चिन्हने वाला होगा या आपको ही लेना होगा ड्राइवर्स लाइसेंस, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ फ्यू लेसन्स सो दैट व्हेन यू गो फॉर द एक्चुअल टेस्ट आसान रहेगा. अदरवाइज वो हैसल हो जाता है ना, इफ़ यू फेल समथिंग एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड, फिर आपको फिर से जाना पड़ता है एंड इट जस्ट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम एज वेल. और Majestic Stays, there's some accommodation in the city, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. अभी हमारा जो वन स्टेडियम इज डूइंग प्रीटी गुड, फुल हाउस काइंड ऑफ चल रहा है. एंड दी जो इनकम प्रिडिक्ट हुआ था विद इन द कोटा, एक्चुअली आई थिंक 3 शोज में उतना पैसा वापस आ गया थ्रू द वन स्टेडियम, तो विच इज़ डूइंग अ गुड जॉब फॉर द सिटी. बट ओवरऑल उतना ज़्यादा, आई मीन इट मे हैव हेल्प्ड अस but not maybe as much as we wanted because the rate is increasing by 7% or something. So every deduction may you will be paying some dollars extra and it is what it is. And there's other changes happening as well jo dheere dheere aapko jo pata chale hi jayega. Abhi to thand chal rahi hai, winter chal rahi hai. So once again I hope you are keeping yourself warm. To chalo dekhte hain hamare paas kaun sa next song hai.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी दोस्तों साथी, होप कि यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम. वैसे हमारे पास बहुत समय तो नहीं बचा, विल सी हाउ मेनी सॉन्ग्स वी कैन प्ले बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर. तो चलो हम जल्दी से एक सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद में वी विल सी हाउ मच मोर टाइम वी हैव आपसे अलविदा लेने के लिए.
1: मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका.

0: can contact T. Nandan of Gowise Driving School. If you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, सदी जलसा फिजी रेडियो, और अब समय आ चुका है हमें अलविदा लेने के लिए। आशा करते हैं कि आपका समय अच्छी तरह बीता। शुभरात्रि, आप एंजॉय कीजिए। दो इट्स अ बिट कोल्ड और विंटा है कीपूम। तो चलो हम लास्ट सॉन्ग आपके लिए छोड़े जाते हैं इस वादे के साथ में, वी विल गेट इन टच अगेन। हम फिर जुड़ जाएंगे इसी तरह स्टूडियो में नेक्स्ट सैटरडे, और साथ साथ में हमारा जो वीडियोज़ है, KYC है और टैलेंट सीरीज है, ये चलता रहेगा। कीप सपोर्टिंग अस, जब भी मौका मिले देन जुड़ जाइए। तो चलो नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम साहिल, बाय।